0: Nilmoni Hembrom are something qua, Sikiria Langras in Pajam Keda, Serikida Kin, Nilmoni Hembrom, and Bashunti Bormo. Nitu the Governor, Akrakamura in Lepege, Gaba the Pajama, Kapumuni Hembrom are something qua, Serin, Serinai, Kanuram Hasta, Alpiajama Jolodor Hasta, something qua, Saprotin, Serin, Alpiajama, Chas Kamikorina, Utno, Ar Horoponko, Nivavote Tutti, Tutiai, Doctor Divasis Soren.
1: Pakistani Kolkata, Kobor Parhadin, Obanikanto Murmo Manamantri Banaton, Narendra Modi Lekada, Mahamari, Hoesi, Bonado Lekana, Gotona, Corte, Promanagada, Jegatari, Jeget Bevostar, Jahan, Anatge, Tang Sumu, Simmer Sumu, Accord the Bangtana Nama Dileria, Bharat Mondop, Mesapala, Gelariana, Brix Churana, Jomelaria, Tesar Mendo, Muchet Maria, Mid Jomelare, Pakre, Munida Menakada, Noako, Sanam, Halotria, Ahalre, Mix, Good, Disomko, Aqua, Sahadare, Barhachitan, Jurko, Amakada. उन्हें देखने का था अर्जुन और गोला सपोर्ट टेहांट कथित के दराय का देर है ब्रिक्स दिशम को जुदे-जुदे लेखन चैलेंज को मुकाबिले या छारावाजा टेका दाम रे ब्रिक्स मारांग सतोर व्यवस्था हताव लेते मिल मतकना मारांग मंत्री तो आरोह ले का था जुदे-जुदे नगराह मुद्रे जोगा जोग नापायद हो लगित्ते ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब थापों रे प्रस्ताव हो दो कना जेगे जा सामार संस्था हु ब्रिक्स चुड़ावना जमेलाय रे 12000 बागेतुरे अक्तरे ब्रिक्स दिसम को होते ते तावकान नवा दिल्ली उच्चन साका में सराव कदा नदमी सोशल मीडिया रे पोस्ट रे जेगे सामार संस्था रे महानिदेशक टेड्रोस अधानम गेब्रेयासुस सनम को लगी सामार रुखिय चेतन एकराड नापाय सामार व्यवस्था और महामारी मुकाबिला रे सामार सुविधा सनम कोटन सेटर का सतम लेते गालमरा होय सराव कदा नवा दिल्ली रे भारत मंडप में ब्रिक्स चुड़ावना जमेला रे फांकता रे मारांग मंत्री होते हैं कजाकिस्तान रे राष्ट्रपति कासिम जोमातो तोकायत साउते बार पहाड़ रे दुपुर रे चले लेना ओना चढ़ा हो मिस्र रे राष्ट्रपति अब्दुल फता एलसी सीसी साउ आर फिलीपींस रे राष्ट्रपति फर्दिनांद आर मार्कोस जूनियर साउते दुप नेपाम कना पार्लमेंट बार पे महाधुरिय मारांग मंत्री जेगे रे लीडर को साउते तेखा तेकार बार पाटरी दुपुर रे सेलेक्ट कते गपाल मराव कना मारांग मंत्री आ तेहेंदु दक्षिण अफ्रीका आर बुरुंडी रे राष्ट्रपति किन साउ होय न्यापाम रपोर्ट कथा मेना ओना छडा नाइजीरिया आर उगांडा रे उपराष्ट्रपति साउते हो आया दुपुर न्यापाम रे कथा मेना कदम केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री मानतन अमित शाह थे फुर्गल होलगरिय जतिन्द्र दासा अपनार जीव अलाय महा लसाड़े गहिर मन चालक दिया सोशल मीडिया मिट्टांग डगरे मानतन शाह लय कदाय हुडुन उमर खना गे जतिन्द्रनाथ दास ब्रिटिश शासक विरुद्ध कोडरा लड़ाई रेया डहारे बचाव लेदा जेल खाना रे सासेत नाचार सहा हुए कानतया जेलबंदी हड़कोचतान सासेत नाचार विरुद्ध लाहौर जेल रे अनशन एहब लेदा आया जीवी अलाय आर जीवी नसाव दिसम रे हड़को चिरदिन को दिशे दहैया सेवा संकल्प अभियान कमी होरा रिया हिंस लेखाते पोनो सरकारी आर सरकार होते ते चलाओ कान विद्यागार करे आयमा लेखन कमी होरा हताओ कना विद्यागार सचिव सूत्रेत विनोद कुमार जिला विद्यागार परिदर्शक छन भेजा का निर्देशिका रे लेकदा गेले आय सितंबर खुना आय अक्टूबर हबिज बागे मोड़े करोड़ होर्डिंग गिदर को कुकमुरिया भारत कमी होरा रे जुदे जुदे केंद्रीय पंथा लेते विद्यागार पठो को बड़ाई चको हुआ विद्यागार करे पठुआ को अते सापड़ाओ आ बक्तृता आका हेप्राव ओना हेप्राव रे जितकेरिय को दो मुख्यमंत्री सोई सर्टिफिकेट को एमाकवा गेलिया सेप्टेम्बर को ना नोमो सेवा गाथा कमी होरला साढ़े ते पठुआ को दो इलाका रे सांता सुसर कमी रे सेलेक्ट को हुआ आधा घंटा रे गायन और सेरेन तलाते लक्चर अखड़ा रे सेलेक्ट आको पठुआ गिदर को उनको भितरी को ना बचा पठुआ को दो पोनत तरी रे सिरपुर तेको सराव हुआ उत्तर चौबीस परगना जिला संदेशखाली रे 12000 बागे मिनट साले रे विधानसभा भोट तायम हिंसलीय घटना रे गोयाकान बीजेपी कमी आस्तिक चंद्र दास आगो जड़मो अदालत आंदे लेखाते हासा आला तड़ाव कते मैना तंत लागि को भेजाओ कदा लेतोरा लेखना नेजाट थाना रे कालीनगर इलाका रे जनजनी आतुरे बीजेपी कमी आस्तिक चंद्र दास लालगोज रे लालिस रकाप लेना तृणमूल चातम मूल रे ताहेन दुष्कृति को विरुद्ध घरवाज हड़को लालिस आडी घेल अवस्था रे अस्पताल रे इदी हर रे हको जांगे दराम लेदा हेसेलिया को आर ओना होते तेगे बिना चिकित्सा ते ओड़ा रेगे जीव चलाओ कांताया हाले के घरवाज हड़को पाटा खना नोआ गारते लालिस का को सदर कदम पोनो पोनत्रे विद्यागार तारे रे पठुआ गिदर को तीरे स्मार्टफोन बांग एम कतेन उनको लागे मेमिट विद्यागार रे मेट्टांग कते स्मार्ट क्लासरूम तैयार एने होरकना पोनत शिक्षा अनुरगी ओइको मंचरेन मारते सूत्रे किंकर अधिकारी आया दाबी नवा खातिर पठुआ चीजर को अलग पढ़ा रहे आरो मनोजोगी को हुई आ आर बेसरकारी विद्यागार से सेना और या मने को नाव को सहा आ नेपाल रे हाले के बनभासी धंधा से ते खोई कोती आर गोज होड़ को चिन्ह को लगी ते मार्किन युक्तराष्ट्र बारती गेर लाख मार्किन डॉलर अनुमोदन एम करना ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱳᱴ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ $50,000 ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱰᱤᱮᱱᱮ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱨᱮ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱡᱩᱜᱩᱛᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱭᱠᱷᱚᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱟᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱛᱨᱟᱱ ᱥᱟᱢᱚᱜᱨᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱞᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱱᱵᱟᱥᱤ ᱫᱷᱟᱱᱫᱟᱥᱮᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱟᱜ 1,386 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
0: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ
1: ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱠ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱦᱳᱭ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱧ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱮᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ
1: ᱵᱟᱝ ᱟᱛᱚ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ 30 August ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱳᱣᱚᱨᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱩᱥᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢᱮ ᱠᱩᱞ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱚᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ 30 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱵᱮᱲᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱥᱳᱱᱟᱞᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱠᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱚᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱳᱣᱚᱨᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱚᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢᱮᱢ ᱠᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ
2: ᱦᱳᱭ ᱵᱚᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱮᱫᱟᱭ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱤᱫᱤᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱩᱞ ᱟᱞᱮ ᱢᱮ
2: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱮᱫᱟᱭ ᱥᱩᱨᱚᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱵᱟᱨᱤᱠᱩᱞ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ
1: ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱯᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱤᱦᱤᱲᱤ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱞ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱭ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ
2: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱚᱞᱮᱫᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱣ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ

0: आकाशवाणी कोलकाता गीतांजलि स्थानीय संवाद एकटू पड़े
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: आमी इखाने।

0: यह आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुमित सिंह पदम द्वारा सितार वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय सुमित सिंह पदम।
0: सुमित को संगीत के प्रति प्रेम और निपुणता अपनी तीन पीढ़ियों पुरानी पारिवारिक परंपरा से विरासत में मिली है। आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार उनके दादा श्री सोहन सिंह पदम एक उत्कृष्ट संगीतकार होने के साथ साथ तंतु वाद्य यंत्रों के सिद्धस्थ कारीगर भी थे। उनके पिता

0: श्री जसवीर सिंह पदम, जो सितार और तबला वादन के दिग्गज हैं, उनके प्रथम गुरु बने।
1: Along with learning from his father, Sumit is learning sitar under Guru Shishya Parampara from Pandit Dr. Harvinder Kumar Sharma, a top grid artist of Akashwani and an acclaimed sitarist, carrying the generations old legacy of his guru, Ustad Vilayat Khan Sahib of Imdad Khani Gharana.
0: Akashwani ke A grade kalakar Sumit लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर रहे हैं और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
1: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include संगीत रतन सम्मान, कला निधि सम्मान, स्वर साधक सम्मान एंड राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान।
0: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वे अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
1: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi and taal kachehri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's reference panel of artists.
0: Aaj ke karyakram mein Sumit Singh Padam apne vaadan ki shuruaat राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप, जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
1: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with राग रागेश्वरी, wherein alap is followed by jod alap, jod jhala, and then vilambit gat in teen taal, madhyalay gat in mat taal, and drut gat is in teen taal.

0: यह था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग तेज। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम will now present राग देश। आलाप is followed by मध्य लय गत and द्रुतगत in तीन ताल।

0: यह था सुमित सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देस। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देस presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation of आकाशवाणी जालंधर।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে। এখন লোকগীতি, শিল্পী মানিক দাস।

0: গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে একটু পরেই দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মোহাম্মদ জুবের। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका

0: बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाता है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said, the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट-माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. The External Affairs Ministry said the BRICS summit in New Delhi produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi yesterday, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela, said more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks.